0: क्या कर रही
1: हो? अच्छा बेटे, अब तो जाके सो जा।
2: आज मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे पास सो जाऊं?
1: आओ आओ बेटे, मैं तुम्हें सुना दूं।